0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समय नाज़रीन, आज 11 बजे अपने खसूसी प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा, जिसके बाद हम समाजी, सियासी और मकामी डेनमार्क के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ लाइव मेहमान होंगे सैयद एजाज बुखारी, जो कि सबका डिप्टी मेयर और मौजूदा सिटी काउंसलर हैं, सिकंदर सदीक, जो कि सबका पार्लियामेंट के मेम्बर हैं और मौजूदा सिटी काउंसलर हैं, इरफान गिलानी, जो कि रीजन के मेंबर हैं और डिप्टी मेयर हैं, ज़ीशान अली एतदाल पसंद पार्टी के पार्लियामेंट के उम्मीदवार भी हैं और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और बड़ी आम पोस्ट पर बैठे हुए, कामरान कुरैशी, जो कि 9 सितंबर को स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पार्टी की तरफ से टिकट होल्डर हैं, सोशल डेमोक्रेट के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा अदनान अली अमीन, जिन्हें आप सुनते रहते हैं, तजिया निगार हैं, सैयद तकीर शाह साहब, जो कि थिंक टैंक हैं, मुजीब कुरैशी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के सदर हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ अहम शख्सियात, दिलचस्प मौजूदात पर गुफ्तगू होगी। आप भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, अपने आरा सवालात और हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ है। वक्त 11 बजे से हम प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे, आपके सवालों के मुंतज़िर हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: यहाँ के आज भी अदारे में कहीं जाते हैं तो पता चलता है ये कि वो कोई फलाना कोई इंजीनियर है, कोई किसी ओहदे पर है, हमारा मुसलमान है, हमारा पाकिस्तानी है, तो हमारा फखर सर फखर से बुलंद हो जाता है। अगर से बात है इन लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता हमारे, क्योंकि वही पुराने जरासीम होते हैं कि आकर उनके अंदर होती है ये, लेकिन इसके बावजूद हमें खुशी होती है कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा जो है ये अच्छे ओहदे पर है, इलम की वजह से है। इसलिए मुसलमानों इस बात की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को यहाँ एक अच्छा नमूना बनाए, अल्लाह ताला उनको तालीम हासिल करने की तौफीक दे जिससे वो इस मुल्क को फायदा पहुँचाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: हाँ वो बाहर से भी है राजस्थान, उसमें फिर वही आ जाता है कि सहूलियत
1: ये गैर मुल्कियों को
0: काफी।
1: टारगेट नहीं कर रहे जो सीडर में इलेक्शन हो रहे हैं डेनिश पीपल्स पार्टी, वो आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ।
0: असल मुसलमान तो जी अल्लाह माफी दे, हम तो पूरी दुनिया में टारगेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, कोर ही नहीं है, कहीं कहीं इकट्ठे हो गए खड़े ही नहीं होते हम लोग। उन्हें पता है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस वक्त हम वो ग्रुप पर रह रहे हैं जो सबसे कम ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अभी भी आप देख लें, मेरी वही लड़ाई है कि अब जब गवर्नमेंट बनी है, ब्लू ब्लॉक ने यही कहना शुरू कर दिया जी कि जी उलनिंग फुले छीक मुस्लिम, फिर वही उठा लिया। और मैंने कहा भूतनी देव, खबर निकल रही है कि हमारे स्कूलों में बच्चे डेनिश मैथ नहीं पास कर पा रहे, इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए हम लोगों को। तुम लोगों ने फजूल का हवा बनाया हुआ, मतलब जो
1: उन्हें
0: प्रॉब्लम
1: तो
0: नहीं
1: उन्हें
0: है
1: बताया
0: उसको
1: ना कि
0: प्रॉब्लम
1: मैं,
0: बना
1: उन्हें आप
0: देते हैं।
1: बताएं एग्जांपल दें कि मैं मुसलमान, आप मुसलमान नहीं है।
0: नहीं हम तो देते हैं ना जी, और जो होते हैं वो तो कहते हैं नहीं अच्छे हैं, मुंह पे तो आपके हमेशा बोलते हैं, मगर बस ऐसी अगर कोई हर मुल्क में चली हुई है आजकल हमारे खिलाफ के, और हम कहीं से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, कोई एक आवाज कहीं भी नहीं बनती हमारी अनफॉर्चुनेटली। जो आपसे भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बात हो रही थी कि अगर आप हम सबको देखें जो पर्सनली लेवल पे मुसलमान मैं हूँ, अब मैं मुझे 40 साल हो गए पर्सनल, मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ, काम मैं कर रहा हूँ काम पे भी अच्छी रिस्पेक्ट है, काफी लोग जो मेरे दोस्त यार हैं आपको भी, हमारे जितने लोग कामों पे हैं कामों पे हमारी ठीक रिस्पेक्ट है, मगर ये जो मीडिया, ये जो एक छोड़ क्या है, ये जो एक नैरेटिव है वो एक दूसरी चीज है, और उसमें जाहिर है सबसे कमजोर हम है, तो सारे ही हमें लताड़े होते हैं।
1: बहरहाल देखे ना, अल्लाह ताला ने टाइम दिया होता है लोगों को, अल्लाह यहाँ से इस मुल्क से जो सीखा होता है। लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एलर्जिक भी आपको है, लेकिन उसके बावजूद टाइम दे रहे हैं। ना टाइम दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको से टाइम आपका इंटरव्यू ना लूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मुल्क से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ इसने हमें दिया है, और जितनी हमारे पास सहूलियात होती हैं बात करने के लिए, टाइम के लिए होती हैं, उस पर अपनी ज़ाती कुर्बानी भी
0: जी
1: देनी पड़ती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें मेरी बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता होता हूँ वो भी कहते हैं यस, क्या कहते हैं जी मैंने इधर नहीं रहना, इधर से चले जाना। मैं ठीक है चले जाना, जाओगे किधर? ठीक है जाओगे किधर? जाने के लिए बड़े मुल्क हैं जिनकी एजुकेशन है, जा भी सकते हैं बिल्कुल है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क ने देखे इतनी हमें और हमारे वालदैन को भी और हमें भी इतनी कम अज कम अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच गए। किसी अरब मुल्क में रह रहे होते काफी ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज ये है कि आज हमारे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हो गए, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? डेनमार्क की वजह से बैठे हैं, नहीं देखे सिस्टम की वजह से बैठे हैं। आज घर बैठ के गालियां देना बड़ा आसान है, मगर बीच में उतर के साथ इकट्ठे होके किस तरह ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं वही आपको कह रहा था, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए एक दफा, कितने कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, फंड बना लेते हैं जी हम लोग, पार्टियों को कहते हैं हम लोग आपको फंड देते हैं जी, हमारी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटी है, पाकिस्तान के वीजों का कुछ करें फंड हम आपको, मतलब हम आपकी पार्टी को अगले इलेक्शन में इतना फंड दे दें, ये कर दें, करें आप लोग हमारे साथ मीटिंग, मीटिंग्स होती हैं इधर भी, आप जब पार्टीज को फंडिंग की जरूरत है हम लोग इकट्ठे हो के सिर्फ बातें करने, नहीं कुछ उनको दें कुछ उनसे लें, कुछ देंगे नहीं कुछ मिलता भी नहीं,
1: और ये म्यूचुअल ट्रांसफर होती
0: तो
1: है।
0: फिर बस ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, इतना इतना अब जो पैसा हम कमा भी रहे उसको थोड़ा सा किसी अच्छी तरीके से थोड़ा टैक्टिकली लगाया जाए। जाहिर है ये है कि एक हम मुसलमान भी हैं, उसमें भी हमें काम करना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तानी है पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर डेनमार्क में एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो तो सारे मानते हैं कि यार आपके तो वाकई पाकिस्तानी वेल एजुकेटेड, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी कमाई है, मगर हमारी मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कौन सा ऑर्गेनाइज है सही तरह से? सारे अपने अपने मतलब पाकिस्तान की पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर तो कम से कम एक करके किसी तरह हम बढ़े ना, कि एक हो के आगे जाके बात कर सके। अब इंटीग्रेशन मिशन साहब आपको बोला था मोदी तो उसका हो गया है, उसके साथ किसी तरह अच्छे से गुफ्तगू करें जाके, मगर गुफ्तगू नहीं सिर्फ, सोशल डेमोक्रेट वाले भी पूछेंगे हमारे लिए क्या है, उनके लिए फिर कुछ होना चाहिए।
1: बिल्कुल आप जवाब
0: और
1: फरमा रहे हैं।
0: मैं लॉबीज्म और इन जगह से ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती है हमें वो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, और इधर कम से कम ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो अल्लाह खैर करे इन चीजों को
1: लेकिन मैं
0: सीख रहे
1: आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जो हैं चौथी

0: जनरेशन आ रही है तो पहलों को तो छोड़ दे, उन्हें कहना नहीं चाहिए, उनको सलाम पेश करते हैं। उन्होंने इन ममालिक को ढूंढा, उनकी वजह से बच्चे आए, फैमिलीज आई, बड़े हुए, दामाद आए, बहुएं आई, ये सारा सिलसिला उनको जो है क्रेडिट जाता है। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं, यहाँ की सियासत है, रहते इन ममालिक में सियासत हम अपने ममालिक की करते हैं, वहाँ की पार्टियों की करते हैं, उनकी हम पार्किंग प्लेस बनाते हैं, कोई भी कोई आ जाएगा तो यहाँ के जितने भी सफर आए वो कहते हैं कि बेशक आप सियासत करें, अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में जा करें या डेनमार्क की सियासी पार्टियों की सियासत करें। इस तरफ लोगों को किस तरह आप मैसेज देंगे?
1: उनको बस यही दूंगा जी कि पाकिस्तान की भी सियासत करें, मगर इधर जो आपकी अब इतनी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बन चुका है सियासत के अंदर, इधर थोड़ा सा उसको यूज करें ना जी, इधर भी हमें बताएं कैसे करना है, क्योंकि सियासत एक चीज है जिस मुल्क में भी हो उनमें काफी सिमिलैरिटीज है। हमारे इतने बुजुर्ग हैं जो अगर पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं तो इधर भी हमें सिखाएं कुछ। अब कैंपेनिंग करते हैं पाकिस्तान स्टाइल से, इधर डेनमार्क में करते हैं अच्छे खासे वोट हासिल हो जाते हैं, तो ये नहीं कि पाकिस्तान स्टाइल से कैंपेन नहीं करेंगे आप तो इधर आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होता है उस चीज का। तो पाकिस्तान में जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जिस तरह आपने वो कहते हैं ना कम कटवाते हो, इस तरह भी इधर हमें बताए ना, फिर हम इधर भी तो काम निकलवाए, थोड़ी सी बस एनर्जी इधर भी ले आए और अपना एक्सपीरियंस इधर हमें भी बताएं कि किस तरह होता है। और जो घर बैठे हुए हैं ठीक है, अच्छा है, जिंदगी चल रही है, मगर कॉन्ट्रीब्यूट करें जिस तरह भी कर सकते हैं, माली करें या अपने एक्सपीरियंस से करें, अपने वो फाउलियों से करें, कोई टाइम देता है उसको टाइम देने दें। हमारा बस मसला ये जो आगे आने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है बस ये अपनी वाह वाह कराने आ रहा है। मैं सबको वही कहता हूँ, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए
0: नहीं नहीं लोग एक और लफ्ज यूज करते हैं इसे जो जी पर्सनली प्रोजेक्शन चाहिए।
1: मैं वही सबको कह रहा था, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए सोशल मीडिया चलाना है, अपना वीडियोज रखना, ये करना, वो मेरे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम लेता है। अब देखना इलेक्शन के बाद मैं भी जरा ठंडा हो गया, सुकून का सांस ले रहा हूँ, मगर वही अब सारे कह रहे हैं यार तुम्हें सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, अखबारों में जैसा मलिक साहब हमारे कह रहे हैं लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, काफी कुछ आपको देना करना पड़ता है, इसमें बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ा टाइम है। और वही मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि ये टाइम मैं दोबारा अपना बिजनेस बना लेता हूँ, कोई कमी है हमें वही मैं पैसे कमा लूंगा, मगर ये एक मेरा चले शौक है, एक फिक्र है अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो एक पेशा ही है, तो मैं कहता हूँ चलो मेरा तो डबल फायदा हो रहा है ये करने से भी। मगर ये काफी लोग हमारे लीक हो चुके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी चल रही है राजा साहब, घर बैठ के तनकीद कर देंगे मगर इन दी एंड काम है सबके पास, तनख्वाह आ रही है, गाड़ी है, घर है, खाना पीना है, इन दी एंड मतलब हमें उस तरह से मसला कोई नहीं, सो मेहनत कोई नहीं कर,
0: मेहनत कोई नहीं करते, बड़ी जबरदस्त बात की है। गिले शिकवे बहुत होते हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम जीरो होते हैं।
1: तो देखें अब इंशाल्लाह अब गवर्नमेंट का काम शुरू होगा, ऑफ हुआ फौसला अगले हफ्ते तक आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफ हुआ भी हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में। ये है कि मैं इसी सोच में हूँ आपके रेडियो पे भी बोलता हूँ कि किस तरह जरा इकट्ठा किया जाए अपने लोगों को, जो जो मेन मेन हर हर अपनी तंजीम के जो सदर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनसे पूछने के लिए कि आपकी तंजीम क्या बातें करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। सब लोग तो बातें सारे कर सकते हैं आपके पास हर वीकेंड आके, मैं भी कुछ, मगर प्रैक्टिकली क्या करना है आगे से इसका कोई अब करना पड़ेगा हमें, जो सा नहीं है काम काफी अच्छी पोस्टों पे साहब, वो इंटीग्रेशन मिनिस्टर आ गया
0: तो
1: काफी
0: अच्छा। हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा यार ये लोकल शोर पड़ा रहता है, मुझे भी लोग तनकीद करते हैं, ये क्या आपने गंद डाला होता है, तो कहते नहीं नहीं राय साहब छोड़े इन बातों को, लोगों की बात ना सुने, ये हमारा शुगल है।
1: बस फिर हम भी शुगल नहीं बन के रह जाएंगे, ठीक है जी, फिर जितने जो मैं जैसा करना वैसा भरना है राजा साहब अब क्या कर सकते हैं। मगर देखे मेरा तो छोटा मुंह बड़ी बात है, मेरे से पहले इन कामों में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव है, मैं तो इसलिए कहता हूँ आगे हैं हम लोग।
0: चूंकि आपको लिखने पढ़ने का मसला नहीं है, आप लिखा करें अखबारात में लिखा करें, बिल्कुल ये आपकी जो टाइम निकाल के कभी कभी हफ्ते में, महीने में, दो महीने में आर्टिकल्स लिखने चाहिए।
1: हाँ जी वो तो है, असल में लिखने का मैं बड़ा बुरा हूँ, मेरा असल में अगर मैं अगर सैंपल से ना पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरा तो न्यूज देखने का दिल मेरा भी नहीं करता, जो आपस की बात है, मगर ये है कि जरूरी भी बहुत है क्योंकि हम वो क्या कहते हैं ना घर छुप के भी नहीं बस बैठे रह सकते कि जी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सब काफी कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अगर हमने कुछ किया ना तो फिर ये है कि बेहतर नहीं होगा कुछ भी।
0: کچھ بھی اتنے. ذیشان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس حالت میں ہمیں ٹائم دیا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
1: جی بہت بہت شکریہ جی, السلام علیکم.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے ذیشان علی جو کہ فٹ بال گراؤنڈ میں تھے, بچوں کے ساتھ فٹ بال کا مسئلہ چل رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ان کا, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اس کے بعد الرجی بھی ان کو تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائم دیا. تو سامعین ناظرین, ہمارا کام ہے ہمیں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم کوئی پولیس مین نہیں, ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا. کوئی دینا چاہتا ہے اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے, لیکن ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں. 7/6/2026 کا پروگرام ہے. 2:40 ہوا چاہتے ہیں. سامع ناظرین, صبح جب ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, چونکہ الیکشن اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں, وزارتیں بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں, کمیٹیاں بھی ظاہر اندر خانے بات تو جو ہے وہ طے ہو چکی ہے, مل چکی ہوں گی, اور اسٹوٹے پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ساتھ حکومت کے ساتھ شامل ہیں. 4 جماعتیں جو سامنے ہیں, باقی جو 2 جماعتیں وہ اسٹوٹے پارٹی ہے. اس پر ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسٹوٹے پارٹیاں کیا ہوتی ہیں. تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں سید اعجاز حسین بخاری شاہ صاحب, جو کہ سابقہ ڈپٹی میئر ہیں, موجودہ سٹی کونسلر ہیں اور تجربہ کار ہیں اپنی پارٹی میں, بہت سارا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کام کے حوالے سے. کامران انور ہیں جو کہ ابھی سویڈن میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں غالباً 13 ستمبر کو, اس میں اپنی پارٹی سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ بھی الیکشن سٹی کونسل کا لڑنے جا رہے ہیں. تو ہم اس طرح کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اعجاز شاہ صاحب کی طرف جائیں گے. شاہ صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر.
1: جی, بہت شکریہ رائے صاحب. سب سے پہلے تو آپ کے تمام سامعین کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ کا شکریہ جناب. آج آپ نے دو ملکوں کو کے دو جو طالب علم ہیں, میں تو ہر طالب علم ہوں سیاست کا, اور کامران قریشی صاحب کو آپ نے لیا.
0: استاد ہیں.
1: اچھا چلیں, آپ کی بات سے
0: اتنے تجربے کے بعد بھی ظاہر ہے طالب علم تو رہتا ہے علمی لحاظ سے, لیکن آپ ماشاء اللہ
1: بندہ ساری زندگی سیکھتا. جی جی جی, بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. تو کامران قریشی صاحب کو آپ نے سویڈن سے لیا جناب, ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید, اور مجھے اس بات کا خوشی ہے کہ وہ چونکہ ہم دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں, میں بھی سوشل ڈیموکریٹ سے ہوں اور کامران قریشی صاحب بھی سوشل ڈیموکریٹ سے ہیں, تو یہاں کے بالکل جس طرح آپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہمارے ڈنمارک کے چونکہ الیکشن ہیں جو وہ مکمل ہو چکے ہیں 18 نومبر کو, چونکہ ہمارا کمون کے الیکشن اور ریجن کے الیکشن ہو گئے تھے, اور اس کے بعد یہ مارچ میں ہمارے فولکچنگ کے جو الیکشن ہیں یہ بھی مکمل ہو گئے, اور تقریباً 70 دن لگے حکومت کی فارمیشن میں, چونکہ اس میں مسائل اس طرح کے تھے کہ چونکہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو واضح اکثریت یا برتری حاصل ہو, تو پھر جب اس طرح کی فہینڈلنگ لینا دینا جو ہے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشن چلتی ہے, تو اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر چونکہ مختلف ہم خیال پارٹیاں تو ہوتی نہیں ہیں کہ سب کا نقطہ نظر ایک جیسا ہو, تو ایسی صورت میں یقیناً وقت زیادہ لگتا ہے, اور اس کے ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 جو وہ ہوئی پہلی اٹیمپٹ ہے جو وہ ہماری پارٹی نے کی, اور ہفتے گزرنے کے باوجود اس میں کوئی ریزلٹ نہیں نکل سکا تھا, اور پھر جو ہمارے جو دوسری پارٹیاں ہیں دائیں بازو والی, انہوں نے بھی پھر کوشش کی, اور ان کا تو خیر بہت کم وقت لگا, ان کو احساس ہو گیا کہ وہ شاید ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے, ان میں کنسنسس نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حکومت بنا سکیں, اور پھر تیسری مرتبہ یہ کہ دوبارہ جو پہلی سوشل ڈیموکریٹ اور ایس ایف کریکھیل وینسکا اور موڑگاٹا, ان 4 پارٹیوں نے مل کر آپس میں یہ طے کیا کہ ہماری جو کونلے ہے جسے ریگینگس کونلے کہتے ہیں, کہ ایسی بنیاد جس کو بنیاد بنا کر حکومت کی تشکیل عمل میں آتی ہے, اس میں ان کا اتفاق تقریباً ہو چکا تھا, اور 2 پارٹیاں جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اسٹوٹے پچی ہیں جو وہ 2 جو پارلیمنٹ میں موجود اینز لسٹن انہوں نے اور السینچیو نے انہوں نے حکومت کوئی عہدے نہیں لیے, لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے کچھ جو ان کے اپنے نظریات ہیں, کچھ اپنے پوائنٹس ہیں, ان کا جو تاؤس اوڑنا ہے, ان کا ایجنڈا ہے, وہ انہوں نے ضرور منوایا ہے باقی پارٹیوں سے کہ اگر ان کی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ حمایت کریں تو پھر ان کی کچھ باتیں ہیں جو وہ ماننا پڑیں گی, تو وہ اس پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ اینز لسٹن اور السینچیو جو ان دونوں نے اسٹوڈے پارٹی یعنی یہ امداد دینے والی یہ انہوں نے حکومت میں یہ اس طریقے سے شامل نہیں ہوں گے, لیکن حکومت کو یہ ووٹ ضرور دیں گے, حکومت کو کامیاب کرنے میں ان کا کردار ضرور ہوگا. تو 4 پارٹیاں جو انہوں نے مل کر حکومت کی تشکیل ہے جو وہ ہو گئی ہے, آلموسٹ جو وزارتیں ہیں وہ ان کی تقسیم بھی ہو چکی ہے, और उसके बाद ये कि अब जो कमेटीज हैं उनके मेंबरान हैं जो वो भी आपस में वो भी आलमोस्ट ये कि मेरा ख्याल है तकसीम है जो उनकी मुकम्मल होने वाली है हर पार्टी की तरफ से। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा गैर यकीनी सूरत हाल थी उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल चुके हैं कि हुकूमत की फॉर्मेशन हो चुकी है अगले चार साल के लिए। अब देखते हैं कि ये जो जो अगेंस्ट कौन ले इसको आगे चलकर कौन कौन से मुश्किलात का इनसे होंगे, क्योंकि जब मुख्तलिफ ख्याल के लोग होते हैं तो उसमें कंसेंसस थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें जाहिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी बात को ज्यादा तरजीह दी जाए और हर बंदे की जो बात है वो मानना काबिले अमल भी नहीं होता। हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना असर है जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह की मखलूक हुकूमत में उसके इम्कान ये है कि वो कंप्रोमाइज के साथ चलना पड़ता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि हुकूमत तश्कील पा चुकी है तो अब हमें इससे उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमारे लिए जो उन्होंने मैं इस पे बाद में जरूर अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे जरूर बात करूंगा कि कौन कौन सी हुकूमती जो कौन ले जो बनी है वो क्या बनी।
0: जी शाह साहब बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं कामरान के पास। तो आपने कहा कि जिस तरह आप दोनों सोशल डेमोक्रेट के हैं माशाल्लाह आपका बड़ा तजुर्बा है, तो कामरान भी जो है काफ़ी अरसे से अपनी पार्टी में हैं, उसके मेंबर हैं, पार्टी ने ही टिकट दिया है। अब छोटा सा पुल है दरमियान में, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये दोनों पार्टियां जो सरदे आपस में मिली हुई हैं, तो बहुत सारे डैनिश भी जो हैं वो मालमो में स्कोने में रहते हैं तो वोट भी दे सकते हैं, चूँकि दोहरी शरीयत का दोनों के पास हक हकूक है। तो कामरान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं कोपन एगल पर।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी तरफ से आपके जो सुनने वाले उनको मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं बड़ी आज मैं अपने आप को ऑनर समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे जो मेरे उस्ताद हैं सोशल डेमोक्रेट के, जिनसे मैंने बहुत चीजें सीखी हैं और समझी हैं, उनको देखा है, वो है बुखारी साहब हैं, शाह साहब हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने इनके साथ मुझे प्रोग्राम में लिया। जी राय साहब,
0: कामरान आपको पार्टी ने टिकट दिया और आपके कार्बन 13 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कितने पाकिस्तानी निसाद स्वीडिश जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं?
2: जी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो 26 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक के दौरान आप यहां पर वोट डाल सकते हैं, और जो वोटिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू होगी और वो 8 बजे तक, मतलब है ये टाइमिंग है जो एक पर वो डाल सकते हैं। ठीक, और मैं जो एज ए खड़ा हूँ वो मतलब वो हूँ कामरान अनवर एज ए इसका सिटी काउंसलर का मालमो के अंदर, और मेरी जो वहां पे है 62 नंबर है जी, जो जहाँ पर सोशल डेमोक्रेट पे सिटी काउंसिल के लिए जहाँ पर क्रॉस, मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली वोट दिया जाए, मेरे नाम पे क्रॉस लगाया जाए। और भी हमारे हैं जो मतलब है खड़े हैं, लेकिन वो दूसरी मतलब है वो हमारी पार्टी के अंदर भी पाकिस्तानी हैं 4-5, वो भी साथ खड़े हैं। जी रस,
0: तो कामरान ये जो वोट आपको दे सकते हैं, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही आगे जाएगा ना?
2: जी जी, ये ऐसे होता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं अगर आपको डेनिश और स्वीडन की पॉलिटिशियन को थोड़ा सा मैं कंपेयर कर दूं, इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट, वो ये कि वहाँ पर डिफरेंट डेट्स में इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपके कम्यून के सिटी काउंसलर के हो गए, रीजनल के हो गए या पार्लियामेंट के हो गए, डिफरेंट डेट्स में होते हैं डेनमार्क में। स्वीडन में एक ही डेट्स पे तीनों ये होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब आपके पास बैलेट पेपर जिसको आप वो आता है वो तीन कलर के होते हैं, एक होता है वाइट कलर का, वो जो मतलब वाइट कलर का वो होता है कि आपने कम्यून को मतलब है सिटी काउंसिल के लिए दिया जाए, एक होता है ब्लू रंग का कागज, वो होता है कि जो आपने स्कोने यानी सुबाई पे देना हो, और जो होता है आपका येलो रंग का वो आपका पार्लियामेंट का होता है। तो जिस पार्टी के भी होगा सोशल डेमोक्रेट, उसमें भी तीन रंग के ये डिफरेंट बैलेट पेपर होंगे, या और जो पार्टीज हैं उसके भी तीन रंग के होंगे, तो वो आप वहां से जिसका हो आपको पसंद करते हैं, जो भी कैंडिडेट जो पार्टी आपको पसंद है, तो वो आप उसको वोट भी डाल सकते हैं, उसके नाम पे क्रॉस भी लगा सकते हैं। जी रस,
0: कामरान इस पार्टी में आप खड़े हैं, काफी अरसे से आप काम कर रहे हैं, आपको टिकट मिला, तो आप अपनी पार्टी से मुतमईन हैं?
2: जी जी बिल्कुल, सोशल डेमोक्रेट जो एक पार्टी है वो एज एक लेफ्ट विंग की पार्टी है, और वो अगर देखा जाए अगर जो यहाँ लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसकी मेजोरिटी पार्लियामेंट में नहीं आ सकी, क्योंकि जो दूसरे पार्टी थे जिसको आप राइट विंग कह सकते हैं, उन्होंने इल्हाक किया और उन्होंने उनके साथ मतलब मिल के पार्लियामेंट में सिर्फ एक सीट से उन्होंने हुकूमत बना ली, तो जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ चार साल में। स्पेशली बहुत से ऐसे कानून आए जो स्वीडन के, जो स्वीडन की जिसको आप कह सकते हैं ग्रुंड लेग, यानी जो स्वीडन की बेस जो जो कानून है यहाँ के जो मेन जो जिस पे स्वीडन खड़ा है, वहां तक भी चेंज होने की बातें हुई वहां पर। यानी उन्होंने बहुत से कानून डिफरेंट ऐसे बनाए कि उसमें स्पेशली जो टारगेट किया गया वो आपके इस्लामोफोबिया को बहुत बड़ा टारगेट किया गया, वो टारगेट किया इमिग्रेशन पॉलिटिक्स को, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने उसके उसको एक किस्म का ब्लैक रंग उस पर डालने की कोशिश की, डिफरेंट ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ तक के पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट कुरान की आयात तक पढ़ के उन्होंने मतलब जिजिया की मुतालिक आपको पता है इसके बारे में बताया नाम में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई हैं पार्लियामेंट में जो पूरे कभी स्वीडन की हिस्ट्री में नहीं ऐसे आई। तो ये चीजें ऐसी हैं, जब आप एक ऐसी पार्टी आ जाती है जिसको एक जो एक स्पेशली राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी आती है, तो पता लग जाता है कि उसके चार साल में उस मुल्क का, क्योंकि उन्होंने अपना मंशूर लिखा होता है, तो पता लग जाता है कि इस मुल्क में इमिग्रेशन जो आपकी सियासी होगी वो कैसे होगी। तो अभी जो 2026 का इलेक्शन है, मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है, और ये इसको चाहते हैं हम सारे जो कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सोशल डेमोक्रेट जो एक वो पार्टी है जो एक लेफ्ट विंग पार्टी है और जो एक मतलब एक सबको इक्वल राइट्स देने के हामी है, नंबर दो बात वो चाहती है कि हम हर मुल्क को मतलब ह्यूमन राइट्स को दें, तो ये पार्टी को वोट दें और ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें इस मुल्क में। जी रहा सर
0: कमरान, जो आपकी जिस तरह डेनमार्क में डेनिश पीपल्स पार्टी है, इसी तरह स्वीडन में भी डेनिश पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो उनके जो लीडर हैं वो बयान दे रहे हैं कि अब वो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बात करते हैं, गैर मुल्कियों की बात अब नहीं करते।
2: जी जी, मैं जो रिसेंटली जो आया था एमा बुख जो है ये यहाँ की जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट जो है जो वाइस प्राइम मिनिस्टर भी है, उसने ये बात कही है कि वो और यहाँ की जो स्वेरे डेमोक्रेट इसको स्वीडिश डेमोक्रेट है वो इंस्पायर है डेनिश पार्टी से। तो जो डेनमार्क में कानून बन रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि वो हमारे एग्जांपल्स हैं और वो हम उन्होंने वहां पर ये इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं तो हम वही कानून को बना रहे हैं फ्यूचर में जो डेनिश कानून बने। ये बकायदा वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है। जी रसम
0: शाह साहब, आपने कामरान की बातें सुनी तो एज ए उस्ताद, एज ए आप माशाल्लाह हैट्रिक मुकम्मल भी कर चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, मौजूदा सिटी काउंसलर भी हैं, तो कामरान को एज ए पार्टी फैलो क्या मशवरा देंगे?
1: सबसे पहली बात तो ये कि जिस जानब मोहतरम कामरान कुरैशी साहब ने इशारा किया बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल, बल्कि उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल है जो वो डेनमार्क में है, और डेनमार्क से ज्यादा इस वक्त यूरोप में भी वही फैल रही है, बल्कि इवन के अमेरिका तक यही इसके असरात हैं जो वो नजर आ रहे हैं, जिसमें पहली बात जो गैर मुल्कियों के खिलाफ जो मौजू होता था अब उसको तीसी दिल यानी बिल्कुल डायरेक्टली मुसलमानों तक, मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा उनका असर व नफूज है जो वो नजर आना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ जी कि कामरान साहब को मैं क्या मशवरा दे सकूंगा, ये तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे नौजवान है। मैं मशवरा देना चाहूंगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो स्वीडन में रहती है, मैं उनसे ये जरूर गुजारिश करूंगा, आप जिस जिस बंदे को समझते हैं कि वो आपके वोट का हकदार है, वो उसका नाम कामरान कुरैशी हो या कोई और हो, ABC कोई भी, जिन जिन उम्मीदवारों को आप समझते हैं कि ये हमारे लिए और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आसान होता है कि आपको ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि किसी बंदे ने आपके लिए पहले आज से पहले क्या किया है, आपके लिए आवाज किसने उठाई है या किसमें कैपेबिलिटी है कि वो आपके लिए कुछ कर सकता है, تو ضرور ایسے لوگوں کو پرائیورٹی دیجئے اور ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیجئے. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا سویڈن میں رہنے والے اپنے, خاص کر جو پاکستانی ہمارے دوست احباب جو بہن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں, ان سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ آپ پر یہ سمجھیں کہ یہ شرعی طور پہ اس کو اس طرح کہنا تو شاید ناجائز ہوگا کہ یہ فرض ہے, لیکن یعنی دینی لحاظ سے تو فرض نہیں ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حقوق کی خاطر ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو ہماری آواز بن سکیں. وہ کمون ہو, وہ ریجن کا الیکشن ہو, وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو, جہاں جہاں بھی ممکن ہو ہم اپنے ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور انہیں کامیاب کروائیں. اس میں سے کسی ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوتی, وہ جتنے لوگ ووٹر ہوتے ہیں, جتنے سپورٹر ہوتے ہیں, وہ ان کی کامیابی ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو تمام جتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے, میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. یقیناً وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں کون زیادہ بہتر ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں, میں اپنی پارٹی جو میرے پارٹی فیلو ہیں, میں یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ لوگ ان کو بھی ووٹ دیں گے کیونکہ یہ کیپیبل ہیں, اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. تو جہاں تک انہوں نے ڈنمارک کی طرف اشارہ کیا تو اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈنمارک کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہیں جو وہ اثر پذیر ہوتے ہیں, اس سے اثر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سختیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ کیا کیا قانون بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ ڈنمارک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو یہاں پر کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا معاملہ کہ ایسے غیر ملکی جن کی اسائلم ریفیوز ہو چکی ہے یا کسی جرم کی وجہ سے ان کو ملک بدر کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور ان کو ڈنمارک میں رکھا ہوا ہے, کہ ان کو رکھنے کے لیے اودگائسے سینٹر جس کو کہتے ہیں کہ وہ یورپ سے باہر بنائے جائیں, جس طرح بہت سارے ممالک میں ان کے ساتھ ان کی باتیں چل رہی تھیں. یوگنڈا کا ذکر اس میں چل رہا ہے اور اسی طرح پہلے البانیا کے متعلق بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی اودگائسے سینٹر موجود ہے. تو یورپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں پر خرچہ کم ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ یہاں پر جو یعنی جو ایسے غیر ملکی جو کریمنل بیک گراؤنڈ کے حامل ہوتے ہیں یا ان کی اسائلم میں جو ریفیوز ہو چکی ہوتی ہے, ان کو یہاں پر رکھنے کے بجائے ان کو کسی غیر یورپی ملک میں رکھنے کے لیے اس پر حکومتیں ہیں جو یورپ کی یہ کام کر رہی ہیں, اور اس میں بالخصوص ہماری ڈنمارک کی حکومت ہے جو اس نے اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں, اور بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو غیر ملکیوں کے وزیر ہمارے جو بنے مارٹن پیلس کو, انہوں نے جس دن وزارت ملنے کے دوسرے ہی دن بعد انہوں نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا ہے کہ وہ برسل جا کے تو انہوں نے اپنے کولیگز جو یورپین ہیں ان کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں یہ کام کرنا شروع کیا ہے جی, کہ غیر ملکیوں کے لیے جو اودگائسے سینٹر ہے اس کو یورپ کے جو حدود ہے اس سے باہر کہیں پر بنایا جائے. تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ جب ایک ملک کو دیکھنے کے بعد دوسرے ممالک ہیں جو اس سے اثر ضرور لیتے ہیں, تو وہاں پر بھی حالات ہیں جو سویڈن میں یقیناً کو بہت اچھے ایگزامپلری تو نہیں ہے, لیکن بہرحال جو صورتحال ہمیں یہاں پر ڈنمارک میں جتنا نظر آ رہا ہے, خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے اپنے جو ان کا فورم ہے اس پر ہماری آواز بن سکیں.
0: شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو سمیرا نوا بنی ہے, وزیر بنی ہے ریڈیکل انسٹرا کی, تو کافی انہوں نے سٹرگل کی ہے اور بڑی بن گئی ہیں, وہ بھی غیر ملکی ہیں, مسلمان بیک گراؤنڈ ہے ان کی, تو اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا غیر ملکیوں کا, سب نے غیر ملکیوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
1: سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ غیر ملکی پس منظر رکھنے والے چار لوگ ہیں جو وہ ڈینش پارلیمنٹ میں کامیاب ہوئے, جن میں دو ترکی ہیں اور دو میں ان چاروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ غیر ملکی پس منظر رکھنے کے باوجود انہوں نے محنت کی, انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, ڈینش پولیٹکس میں سٹرگل کی ہے اور آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہ ممبرز منتخب ہوئے, اور اس کے بعد یہ کہ پھر سمیرا نوا کو جو انوائرمنٹ کی منسٹری ہے وہ بھی ملی ہے. यकीनन मुसलमानों के लिए जहाँ पर ये गैर मुल्कियों के लिए खुशी की बात है, वहाँ पर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मुझे जब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ तो जहाँ पे एक साइड पे खुशी होती है दूसरी साइड पे अफसोस भी होता है कि अगर दो तुर्की बन सकते हैं, दो अफगानी बन सकते हैं, तो वाई नॉट इवन ए वन पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी एक भी क्यों बनाने में कामयाब नहीं हो सके, उसकी वजूहत क्या है। और इस पर मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे क्या वो कैपेबल नहीं थे, यकीनन वो कैपेबल थे, उनमें क्या ये सलाहियत मौजूद नहीं थी, बिल्कुल सलाहियत मौजूद थी। इसको एक इशू, इसको इसको बस एक ये इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद मुझे कहीं से कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। मैं चाहता तो ये था कि हम में से, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में से हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं जो ये हैसियत रखते हैं कि उनकी बात सुनी जाती है, उनको लोग पसंद करते हैं और वो जिम्मेदार लोग हैं, उनमें से कोई एक बंदा इनिशिएटिव ये लेता और इन वजूहात को जरूर हम एड्रेस करते कि इसकी वजूहात क्या हुई है कि हमारे जो कैंडिडेट पाकिस्तानी खड़े थे उनमें से कोई एक भी किस वजह से कामयाब नहीं हो सका। उसमें क्या वो कैंडिडेट्स हैं जो वो जिम्मेदार हैं, अपनी उन्होंने अपनी इलेक्शन कम कि हमने उनके लिए, हम नहीं निकले, हमने वोट नहीं उनको दिया, हमने उनको कामयाब नहीं करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये भी लम्हा फिक्रिया है। हरहाल जहां तक आपने ये कहा जी कि सुनैरा नवा है जो उनको वजारत मिली है, बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें भी अपना लोहा मनवाएंगी और यकीनन ये तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक खुश आइंद बात है। और उनका चूंकि बैकग्राउंड भी मुसलमान बैकग्राउंड वाली है तो पिछले दिनों तो उन उनके मुतालिक जो जो गैर मुल्की दाएं बाजू की जो जमातें हैं उन्होंने नहायत गलीज जुबान भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ, मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स जो गैर मुल्की बैकग्राउंड का हामिल है वो हमारे लिए काबिले इज्जत है, उसी तरह जिस तरह डैनिश काबिले इज्जत है, और हमारे हुकूक वही हैं बिल्कुल जो किसी एक डैनिश के हैं, तो हम उनसे किसी भी सूरत में ना कम तर हैं, ना हम उनसे कम इलम हैं, और ना ही हमारी हैसियत उनसे कम है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को गुफ्तगू की आज़ादी है और हर बंदे के हकूक हैं जो वो मुसल्ले में सबके बराबर हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना लोहा मनवाएंगे इस फील्ड में।
0: शाह साहब, आपने कहा कि हारने के असबाब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक खबर है और खबर दे रहा हूँ मैं कि जब सुमैरा नवा ये इलेक्शन लड़ी तो अफगानियों की जिस तरह हर चीज, हर मुल्क के लोगों की तंजीमात होती हैं, पार्टियां होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वो सारे ग्रुप्स आपस में बैठे तो उन्होंने कहा जो कुछ हमारा, जब कुछ मर्जी हो गया हमने इसको वोट देना, बाकी हमारे मामला इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होने चाहिए, और उन्होंने वोट दिए।
1: बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि और ये उस चीज का इजहार है कि उन्होंने जो पर्सनल वोट लिए हैं उससे पता चलता है कि उनकी बैकअप कितनी है। और अगर हम देखें तो हमारे जो मैक्सिमम, हमारा कैंडिडेट जो जुहैर अली को जो मैक्सिमम वोट मिले वो तकरीबन 2000 के करीब है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जुहैर अली की नाकामी नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की नाकामी है जिन्होंने उसको इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया कि हमारा एक मैंडेट, कम से कम कासिम नजीर एक अच्छे कैंडिडेट थे। नहीं है कि मैं दुआगो हूं उन सब के लिए जो किसी भी पार्टी में रखते हैं, कम से कम उनके मसाइल वही हैं जो मेरे मसाइल हैं, उनका दर्द वही है जो मेरा दर्द है, तो मैं उन सबके लिए दुआगो। और मैं आपसे बारे दिगर आज फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बहसीयत चेयरमैन कम्युनिटी फोरम आप इनिशिएटिव लें और कोई ऐसी एक इसकी इब्तिदा करें, मैं आपका सपोर्टर हूं इंशाल्लाह। जब भी आप इस सिलसिले में मीटिंग कॉल करेंगे मैं हाजिर होऊंगा और अपनी बसात के मुताबिक जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसके मुताबिक जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने तजर्बात की रोशनी में, मैं इंशाल्लाह जरूर करने के लिए तैयार हूं। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए अगर हमारे जो मुखालिफ है अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते। जो गुजर गया उस पर रोने पीटने की बजाय अब उससे कुछ सीखने की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि हम इसको उनकी उनके कामयाब ना होने के असबाब क्या हैं, और ताकि आइंदा के लिए लाए अमल तैयार किया जा सके कि हमारे कैंडिडेट्स हैं जो उनको किस तरीके से अच्छी तरह सपोर्ट किया जा सकता है ताकि कम्यून्स में, रीजन में और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी है जो हमारी प्रोपोर्शनल हो, जिस लिहाज से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुनने में आता है कि अगर पाकिस्तानी अच्छे तरीके से मेहनत करते तो शायद 3 सीटें हमारी हैं जो वो आसानी से, हमारे 3 लोग कामयाब हो सकते थे, वो किसी भी पार्टी में हो, इससे कत नजर होकर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हमें हालात का जायजा लेते हुए और हालात की संगीनी, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं गैर मुल्कियों और मुसलमानों के लिए, जो मजीद सख्तियां की जा रही हैं, ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का इजहार करें। जी राय साहब,
0: बड़ी ज़बरदस्त शाह साहब आपने बात की, इत्तेफाक और इत्तेहाद करें। कमरान, आपने शाह साहब की बातें सुनी और आपने क्या सीखा और आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं बिल्कुल, मेरे बल्कि शाह साहब हैं मेरे साथ हैं, मैं तो इनके साथ जो पहली इन्होंने बात की थी ना कि ये जो बना रहे हैं ऐसी जेल जो दूसरे मुल्कों से, बिल्कुल स्वीडन में ये इसके बारे में सोच हो रही है, क्योंकि इसके आपको पता है जेल में उन्होंने स्टैटिस्टिक निकाली कि एक अगर बंदा आता है उसको उसका एक साल में कितना उस पे यानी इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, गरमाइश दी होती है, खाना होता है 4 वक्त का, 8 घंटे के बाद मिलता है, तो ये बहुत कॉस्टली है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है, फॉरनर है, क्योंकि जो अपने स्वीडिश लोग हैं उनको तो वो अपने मुल्क से नहीं फेंक सकते।

0: हमने किसको वोट दिया, वो क्या कर रहा है, मतलब वो कभी उनके पास आया भी नहीं होगा, उससे कोई मामला भी डिस्कस नहीं किया होगा। तो आप उस बंदे को वोट दें जो ये डेनमार्क में या स्वीडन में, जिसको आप जानते हैं, जो हमारे एक कम्युनिटी का मेंबर है, जो एक फोन पे है, फोन अगर उसका नहीं मिल रहा सोशल मीडिया पे मौजूद है, कभी कहीं मिल जाता है, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज होती है वहां मिल जाता है, उसको घर में बुला लेते हैं, जबान का बैरियर नहीं है, मतलब है ये बहुत ईजी है, और ये बहुत ईजी है कम्युनिकेशन करना। और अपने सोसाइटी को डोमिनेट, स्पेशली जो नाउ अ डे जो टाइम चल रहा है, वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियन को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होते हैं वोट, और वोट से उसको मिलती है पावर, और वो पावर अपनी इस्तेमाल करके आपके लिए खिदमत करता है। तो उसको वो वोट जो अगर एज ए यूनिटी के साथ आप एक बंद दे सकते हैं, मतलब है मिलके, तो वो फिर बहुत सी चीजें उसको माननी पड़ती हैं, उसको उससे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, उसी को सियासत कहते हैं, कि सबको साथ लेना और अपने वोट मिलाना और अपने यानी हकूक लेना, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजनशिप है, हम यहाँ के टैक्स देते हैं, हमने यहाँ पर काम करते हैं, और ये हमारा मुल्क है, ये बिल्कुल ऐसा मुल्क है, हम इसके बाशिंदे हैं, इसी मुल्क ने हमें एजुकेशन दी है, हमें तालीम दी है, हम बीमार होते हैं, हमें हॉस्पिटल जाते हैं, हमारी पेंशन इस मुल्क से है, इस मुल्क को हमने पूरी जवानियां दी हुई है, हम मतलब है ये हमारा वाकई मुल्क है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो शाह साहब ने फरमाया बिल्कुल सही है, मैं इनकी वो मतलब तायद करता हूँ, और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली जो है उनको यूनिटी होनी चाहिए डेनमार्क के लिए, और इवन इस यहाँ पर भी इतनी नहीं है जो जो होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जो एक वाइब्स आ रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों को जो यहाँ एक बड़ा मसला है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर यहाँ की कम्युनिटी स्पेशल जो भी आई हुई है मालमो में, वो डेनिश कम्युनिटी से बहुत डिफरेंट है, जो डेनमार्क के स्पेशली लोग हैं, उनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, जो यहाँ के लोग आए हुए हैं, वो आए हुए हैं यानी यूरोपीय यूनियन से, फॉर एग्जाम्पल इटली से आए हुए हैं, यूनान से आए हुए हैं, एक आपके स्पेन के आए हुए हैं, तो वो उनको पास यानी थोड़ी सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वोट के बारे में, उनके पास जबान का बैरियर है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिस यहाँ पर दूसरे किस्म की थी, अब उनको वहां पर हमने अवेयरनेस देनी है, उनसे कम्युनिकेशन करना है, फिर उनको समझाना है, उनको बताना है, यानी यहाँ पर जो है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करें डेनमार्क के साथ। तो हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं, और अल्लाह से उम्मीद भी है, और इंशाल्लाह आपको पता, अल्लाह शहनशाह को शहनशाह अल्लाह से जो मांगे आप बड़ा मांगे, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, तो हम कोई ना कोई एक सीट निकाल जाएंगे। जी रसा
1: शाह साहब, आपने कामरान की बातें में सुनी, तो प्रोग्राम को हम क्लोज भी करते हैं, आप क्या कहेंगे?
2: जी, मैं सबसे पहले तो जितने भी पाकिस्तानी और जो मुसलमान और गैर मुल्की जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा लेंगे स्वीडन में, मैं सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, और उनमें से जो बेहतर हैं उनको यकीनन उसका एज हासिल होगा, वो ज्यादा उनको फायदा हो सकेगा। और जिस तरह कामरान साहब ने ये जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी भी जिम्मेदारी है, जिस तरह ये बता रहे हैं जी कि बाकी यूरोपियन यूनियन से जो लोग आए हुए हैं, डेफिनेटली उनका जुबान का बैरियर तो है, जाहिर है उनको उस तरह से, वो जहाँ पे 15-20 साल 25 साल किसी और यूरोपियन मुल्क में रहे हैं, तो यहाँ पर अगर किसी को 2 साल 4 साल हुए हैं, तो उस तरह की जुबान से तो उनको जाहिर है उनके लिए मुश्किल तो जरूर होंगी। तो इनको चाहिए जो हमारे कैंडिडेट्स हैं कि उनके साथ रवाबत हैं जो वो ज्यादा करें, मुख्तलिफ जरियों से डोर टू डोर कम्पेन करें, इसके अलावा जो मसाजिद हैं हमारे जो तंजीमात हैं उनके जरिए रब्ता करें, और सोशल मीडिया आजकल सबसे तेज तरीन जो अपना पैगाम पहुंचाने का जरिया है वो सोशल मीडिया है, उसको भरपूर इस्तेमाल करें, और जिस तरह मैंने गुजारिश की है तमाम जो बिलखसूस जो पाकिस्तानी है उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो वोट जिसको मर्जी दें, उन तो एक अमानत होती और उसी को दी जानी चाहिए जो उसका अहल है, और लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम वोट अपना जाया ना करें, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन अपना वोट का हक यकीनन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामरान साहब के लिए मैं दुआगो भी हूँ और बाकी साथियों के लिए भी दुआगो कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे।
1: कामरान, आपने शाह साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे?

0: जी बस मैं कंक्लूड करूंगा, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, और प्लीज आप हमें गाइडेंस भी दिया करें और हमारे साथ आप कीप इन टच रहें. योर योर मीनिंग्स, योर कन्वर्सेशन, योर हेल्प अलॉट फॉर अस. और मैं राय साहब को भी एक बहुत एज यूजली इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, क्योंकि ये उर्दू के अंदर पूरे स्कैंडिनेविया में कई सालों से कि एक जिंदगी उन्होंने एक कोरोना भी मेरे ख्याल से कभी सैलरी का नहीं लिया होगा कहीं से भी. ये एक मतवातर कंटिन्यूटली सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक हेल्प कर रहे हैं, उनकी आवाज में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों का मौकफ पेश करते हैं, उनके मसाइल का जो होता है वो करते हैं, अम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. और मैं एज ए जो जो जो अम्बेसिडर साहब हैं वो माशाल्लाह जो डेनमार्क है, मैं वो हमारे मालमों के लिए बड़े बहुत अच्छे वो मतलब है, हमें स्टॉकहोम जाना नहीं पड़ता, हमें आपको पता है 8 घंटे आने जाने के लिए होता है. तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है डेनमार्क की है, ये बड़ी हेल्प करती है हमारे साथ बहुत से काम होते हैं जो बिल्कुल हमें एक कुछ घंटे के में अंदर हमारे यहाँ हो जाते हैं. तो राय साहब आपका वंस अगेन, आपके टाइम का और आपकी जो खिदमात है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो अमेजिंग है जी. राय साहब
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, कामरान आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती टाइम छुट्टी वाले दिन निकाला.
2: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत मेहरबानी.
1: सामान नाज़रीन, ये थे सैयद एजाज हुसैन बुखारी शाह साहब और कामरान कुरैशी जो थे, और ये दोनों सोशल टाइम क्रिएट किए हैं और दोनों अटैच थे. इलेक्शन हो रहे हैं मालमों में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए इस पर हम बात करते हैं. अगर कोई बात करना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है.
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए. सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें.

0: ठीक है, अच्छी इज्जत देंगे। लेकिन अब निकोला वार्मिंग जो है वो ओहू से है, यानी कि मैं तो हर एक का अपना अपना होता है ना। मैंने पहले पार्टीज की बात की है, आपका सोशल डेमोक्रेट से तलक है, कुछ लोग हमारे रेडिकल से बड़ा स्ट्रॉन्ग तलक रखते हैं, कोई किसी की पर्सनल ही होती है। जस्टिस मिनिस्टर बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन लेट्स है कि अगर मॉडर्न पुलिस को आए और वो हमारी बात सुने, जो एज ए वुलेनिंग एज ए इंटरनेशनल मिनिस्टर उससे बात हो, तो आगे अपने अपने हलकों में फाइनेंस की बात हो, जस्टिस की बात हो, वो तो अपने मिनिस्टर के साथ खुद ही बात भी कर सकते हैं। बहरहाल ये राय आपकी अच्छी है, और इंशाल्लाह अजीज जैसे राय साहब ने कहा, ये भी बात अपनी करते रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी करते रहते हैं, और जिधर जिधर तल्लक है उधर भी होती रहती है। लेकिन क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ हमने पहले ही ये चीज जो है इस तरह इस पर यानी कि काफी गौर फिक्र किया है, और ये भी बात यहाँ हो रही थी कि आया इतने वोट होने के नाते, हमारे इतना बड़ा वोटर था, वेस्ट विंग में भी था, कोपनहेगन के अंदर भी था, तो फिर हमारा कोई मेंबर बना क्यों नहीं? वो तो एक एक लहदा बात है। आप जो बने हैं, और फिर आपने जो कहा है मॉडर्न पुलिस को होगी स्टेटमेंट, देखें मैं मेरा मेरा उसके साथ यानी कि मैं सोशल मैं भी मेंबर रहा हूँ और काफी पुराना हूँ, और इन लोगों से कोई इससे तो एक जाति ताल्लुक है। मैं नहीं समझता कि मॉडर्न पुलिस को ये इस तरह सख्त जो है, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा, उसे स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। तरीकाकार होता है, पॉलिटिक्स का भी तरीकाकार होता है। हम भी और ये कतई नजर इस पर, जो गैर मुल्की क्रिमिनल हैं, गलत हैं, कातिल हैं, माफिया है, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। वो मुआशरे के अंदर यानी कि जो भी है वो डेनिश है वो गैर मुल्की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन
1: नहीं सब उसके
0: ये
1: लिए
0: जो
1: कानून
0: तरीका
1: बना हुआ है।
0: देखे ना, कानून बना, वो जो मॉडर्न ने बात की है, ये इदनान ने भी बात की है, हम भी जानते हैं। एक्चुअली तो ये 5 साल पहले की एक प्लानिंग है यूरोप ईयू प्लेटफॉर्म से, तो प्रैक्टिकली करने के लिए इन्होंने डेनमार्क को आगे रखा था। रिवांडा में पहले प्लानिंग हुई, कोई अल्बानियन में हुई, अब मॉडर्न ने जो कहा है कि अभी इन्होंने रिसेंटली काफी इस पर वर्क की है, तो उसने बड़ी मैं जाती तौर पर समझता हूँ इतना उन्होंने बड़ी जल्दी में बड़ा सख्त बयान दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो
1: नहीं
0: उसने कहा
1: ये मैं आपको एक थोड़ा इंटरव्यू अंकल कर रहा हूँ। मैं ये स्टेटमेंट मैंने उसको लिखा भी है पर्सनली, और मैं होपफुल करूंगा कि वो इसको फॉलो अप करेगा। मैं उसके साथ ज्वाइन की हुई है 1996 की, और जैसे मैं उसको जानता हूँ ये उसकी चीज नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। मैंने उसे लिखा, मैं होप करूंगा कि वो जवाब देगा इस चीज पे।
0: मैं आपको बताऊं कि मैंने उसे मैसेज जो लिखा उसका वजीर बनने के बाद, चलो का फिर स्टेटमेंट आई मेरे घर में, मेरे बच्चों ने मुझे थोड़ा सा वो मजाक कहना या थोड़ी सी तनकीद की, फिर जब मैंने पूरी स्टेटमेंट सुनी मैंने उसे मैसेज लिखा। उसने कहा मुनिया टू आर यू इन रिको अते मेरा छूसना है तेरी तौली विस्के विस्के छेंगो विस्के है छे और दिन ती ले रहे, यानी कि वो सारी चीजें हम समझते हैं। ये दूसरी देखें, एक गंदा अंडा जो है वो सारे यानी कि या एक गंदी मछली जो है वो सबको खराब करे, ये नहीं हो सकता।
1: मियां साहब
0: हम
1: इस
0: ऐसी
1: बात पे
0: को नहीं
1: आपसे
0: भेज
1: सब
0: सकते,
1: इत्तफाक करते हैं।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं देखे, हमने एक साथ चलना है, सबने चलना, मुझे बड़ी खुशी
1: आपने
0: हुई है।
1: गंदे अंडे की बात की, गंदी मछली की बात की, ये ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि कूजे में दरिया को आपने बंद कर दिया है।
0: बड़ी सीधी सी बात है राय साहब, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी चौथी जनरेशन यहाँ, और हम देखे ना, अब एक बच्चा है, लेट्स से मेरा बेटा है, उसके ही इज डॉक्टर, उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा कि वो डॉक्टर है या यहाँ पैदा हुआ या, लेकिन अगर कोई उसे ट्रीट बाहर इस तरह करता है कि ये भी फॉरनर है, मुसलमान है, इसने दाढ़ी रखी है, तो ये यानी कि एक इस मुल्क के अंदर हमारे लिए, और इसीलिए जब ये लोग, पहले मैंने जो
1: मियाँ
0: बात
1: साहब
0: की जो
1: पार्टियों
0: जॉब्स
1: में
0: नहीं मिलती,
1: तल्लुकात पैदा करने पड़ते हैं, लॉबी बनानी पड़ती है, तो फिर देखे ना अदनान को भी बहुत सारी बातें होते हैं, लिखता है मुजीब साहब हैं, अब इन्होंने SF ज्वाइन की है, डेफिनेट ये मीटिंगों में जाते हैं, शाह साहब हैं पुराने हमारे, सब पार्टियों का गहरा तजुर्बा रखते हैं। शाह साहब आप क्या कहेंगे?
2: नहीं, मैं बिल्कुल बुखारी साहब का भी मैं सुन रहा था, अदनान का भी सुन रहा था, मियाँ मुनीर का। मुझे पता है कि मॉडर्न पुलिस को मैं जाती तौर पे जब मियाँ साहब के ऑफिस में वो आया होता तो मुलाकात मेरी उनके सामने हुई थी,

0: आपको पता है ये छुट्टी किस मकसद के लिए थी, कौन लोग था, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे?
1: अस्सलाम वालेकुम सबको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूंगा कि आज ये कौन लॉ तय था, और इस पे तो आज स्पीच वगैरह हुई है डिफरेंट, क्योंकि जैसे आपको सबको मालूम है 2 दिन पहले नई इलेक्ट गवर्नमेंट बैठी थी, और उसके अंदर क्या कहते हैं सबकी अपनी अपनी स्पीच होती है, और डेफिनेटली था उसके अंदर लास्ट बेबी को टारगेट किया गया था फ्लोर ब्लॉक से, क्योंकि उन्होंने उसको ऑफर दी थी। और दूसरा ये कि जो क्या कहते हैं मौत मेसर्स में थे, उस पर बस जैसे कहते हैं टारगेट किया था सुशील तो कुछ शायद वो उजले नहीं पुलचिंग पे लिपा करेंगे, मगर ये उस बात को उसने शायद मेरे ख्याल से इसको ये नहीं पता कि लिपा करने के लिए 90 सीटें चाहिए होती हैं, वो तो इनके पास नहीं है। तो इसलिए बंदा कह सकता है कि ये बस एक किस्म का गवर्नमेंट की तरफ ही इनने टारगेट्स किए थे और अपनी अपनी स्पीच की थी। उसके अंदर ये था कि सबको इंतराज एक चीज का था लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर शायद अपना कुछ स्टेटमेंट इस कुल हाउस पे देगी, मगर वो नहीं थी आज इधर डेनमार्क में, वो किसी यू की मीटिंग में थी, तो इसलिए उसने आज स्पीच नहीं की। उसके दोनों नेक्स्ट फॉर्म ने स्पीच की है, और वही जो शुरू हुआ था कि कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा सुशील मुकदस में, क्योंकि उसने एक तब्दीली की थी अपनी बैंक गवर्नमेंट में के फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिस मिनिस्टर को बदल दिया था, मगर उसकी भी एक लॉन्ग सेक्टर वजह है, वो आस्ता आस्ता बाहर आ जाएगी कि उसके अंदर वजह क्या है कि वो क्यों चेंज किया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे।
0: शुक्रिया अदनान। शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, आज जो छुट्टी 30 दिन के हवाले से शाह साहब आप क्या फरमाएंगे?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दोनों साथियों को, मजीब कुरैशी साहब, मेरे छोटे भाई इदनान बेटो, जैसे आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ग्रून लॉस डे होता है, ये होता है आइन आइन का दिन, जिस दिन डेनमार्क का आइन बना था। आइन लोगों को समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम उर्दू में आइन कहते हैं और डेनिश में उसको ग्रून लॉ कहते हैं। तो ये आज के दिन इन्होंने नफाद किया था डेनमार्क के अंदर। लेकिन ग्रून लॉ के बाद जो दूसरे कानून बने हैं इस मुल्क के अंदर, उसके पर उस पर हम गाय गाय उसके ऊपर हम रोशनी डालते रहते हैं, लेकिन वो बात वही है कि भैंस के सामने बैठ के तो वो बीन बजाने वाली। तो राजा साहब, आज का दिन जो था ये बड़ा मसरूफ रहा है। आधे लोग, बाज लोग आधे काम आधे दिन काम पे गए थे, बाज लोगों को पूरे दिन की छुट्टी थी, और बाज लोग पूरे दिन काम पे गए हैं। तो अब जो बात है कि ये गवर्नमेंट जो बनी है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसके क्या चीजें हैं, आज की अखबारों में सबसे बड़ी हाईलाइट्स इन्होंने जो की है वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन जो इन्होंने मुआहदा किया है, जिसको कहते हैं कि भाई एक बुनियादी मुआहदा करती है हर हुकूमत जब बनती है, तो वो एक बुनियाद रखती है कि हम इसके ऊपर आगे जाके तो हुकूमत को जो है उसकी उसको चलाएंगे। तो उसमें इसको हसाई मुल्क तो जाहिर किया गया है, लेकिन जैसे पहले थी पिछली हुकूमत या उससे पहले कि भाई मजहबों को आजादी होगी, उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इससे कुछ खतरे की बू इसलिए आ रही है कि कहीं ये डेंसफोर के पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ मिलके तो कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे जिससे फ्यूचर में जो बाहर के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं या खुद डेंशों के साथ क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम कोई राय नहीं दे सकते अभी। लेकिन देखेंगे कि जब मेटे फेडरिकसन वापस आती है तो वो क्या करती है। उसने हुकूमत बनानी थी, हर सूरत में हुकूमत बनानी थी, उसने वो हुकूमत बना ली। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो ये कहा जा रहा है जी कि सोशल डेमोक्रेट दूसरी गवर्नमेंटों के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। हम ये देखें कि SF ने क्या अपने मुतालबात मंजूर कराए, अभी तक अखबारों में नहीं आए। जो है रेडिकल वेंसा, उसने कौन से मुतालबात सामने रखे हैं वो अभी तक नहीं आए। तो सोशल
0: शाह साहब,
2: डेमोक्रेट
0: ये
2: के तो
0: बिल्ली
2: और
0: थैले से बाहर आ जाएगी, ये मुजीब साहब से पूछते हैं कि मुजीब साहब ने भी चूंकि SF ज्वाइन कर ली है तो अभी तो नए मराहिल में, अभी ताज़ा ताज़ा मेंबर बने हैं। मुजीब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आप इस दिन के हवाले से क्या फरमाएंगे?

0: अल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम मेरे प्यारे बड़े भाई तौकीर शाह साहब और मेरे वफादार अदनान साहब, सबको और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: ऐसा जी
1: वालेकुम
0: के अभी
1: अस्सलाम।
0: दोनों दोनों माशाल्लाह जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने ग्राउंड लोड डे के मुतल्लिक तफसीलन ना बता दिया है कि ये दिन क्या होता है। जैसे मोहतरम शाह साहब ने अपनी कहा कि ये आइन के लिए आइन इस दिन बना था, और कुछ लोग छुट्टी पे, कुछ लोग आधी छुट्टी पे, कुछ लोग पूरा दिन काम पे, यानी कि मिला जुला रुझान था। अब आते हैं कि जो हुकूमत बन गई है, तो मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि काफी महीने लगने के बाद एक दिन एक एक जगह पे आके मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो बैठी हैं और उन्हें हुकूमत को हुकूमत साजी कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हुकूमत साजी में जमातें शामिल हैं, ये बड़े सोच समझ के इन्होंने बैठ के ये फैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूर सोचेंगे। जैसे देखे खबरों में आ रहा है कि थैले को फ्री होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए, पार्किंग के मसाइल हैं, और आपको पता है एल्ड्रा जो हमारे प्लाई एम है और सेहत के शोबे हैं और बेशुमार जगह स्कूल हैं ताकि वहां पे कुछ बेहतरी आए। तो मेरा ख्याल ये सारी जमातें को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अवाम को जरूर देंगी, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे ही जमातों के इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया है, वो आपने देखा है कि अवाम ने ऐसे ही लोगों को ऐसे मुंतखब किया है कि उन्होंने ये बता दिया है जी कि आप जो हमारे अगर मुतालबात जो हमारी चीजें सही सीमत में नहीं लेके आते तो आपका यही असर करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी जो कि 50 से ऊपर मैंडेट लेती थी, सोशल डेमोक्रेट वो 38 पे आ गई है, ऐसी और भी पार्टियां जो है जिन्होंने कम मैंडेट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत बनी है ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर जो है वो चीजें ले। अभी शुरू शुरू में आपको पता है तनकीद भी होगी, बेशुमार चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी 3-4 महीने 6 महीने में आफ्टर यूल कह लें, नया साल जब स्टार्ट होगा तो फाइनेंस लो फाइनेंस का जो जब स्टार्ट होता है साल, तो फिर मुझे उम्मीद है किसी न किसी चीज में बेहतरी आएगी। जैसे उन्होंने कहा है फुकरून के ऊपर से हमने मम्स उठा लिया है और चीजों पे हम ऐसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का वो सोच रहे हैं 22 साल तक, और भी काफी चीजें जो है कि पाइपलाइन में है। अदनान को और मोहतरम शाह साहब को बेहतर पता है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इनशाला ये हुकूमत जो है अगर इसने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो ये कामयाब होगी, नहीं कारकर्दगी दिखाएगी तो शर्त तो फिर आपको पता है अवाम यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चलती है, अपने वोट के जरिए हुकूमतों को आगे पीछे ये करते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इनशाला डेनमार्क के लिए बेहतरी होगी।
2: बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। अदनान, आपने दोनों साथियों की बातें सुनी, उन्होंने बताया डिमांड्स भी कर रहे हैं, तो आपने देखा जिस दिन हुकूमत बनी सारे वज़रा जो है मिनिस्टर्स बाहर आ रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि सब जो है माशाल्लाह बड़े खुश थे, जैसे कोई मैदान जो है वो फतह करके बाहर निकले हैं। तो अब ये मुजीब साहब ने फरमाया कि इन सिस्टर ने कहा जी कि दांतों का इलाज फ्री होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से भी नोट करते रहते हैं, तो एज ए तजिया निगार आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं?
3: राजा साहब, मैं इसमें ये कहूंगा कि आज कौन लोग थे था, और यहाँ पे जैसे आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर जो मच्छी से इस्फाया तो वो भी आज आया हुआ था, और वो कोपे फॉर्म है ना जो जो पार्टी को लीड करता है, और उससे सबकी बात हो रही थी, तो उसने एक ब्रेकिंग न्यूज हमें दी थी कि मैं फैंसोर बैलन में बैठा हूँ जहाँ से ये सारे पैसे वगैरह निकलते हैं। तो वो यही कह रहा था कि आप सब ने एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो वादे किए हैं ना उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अभी हम उस पर क्या कहते हैं पूरा हमने जो प्लान है वो एक प्लान बना बैठा हुआ है, मगर उसके अंदर ये है कि आस्ता आस्ता चीजें जो है ना वो बाहर आएंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको कह दूं, जिस तरह ये मजीद साहब ने कहा है कि इनकी ये है कि ये मम्स वगैरह इसको क्या कहते हैं खत्म करना है और इसको कंट्रोल करना है, और बेंजीन को और डीजल और इन चीजों को देखना। उसके बाद इनका प्लान ये है कि ये जो डिबेट शुरू हो गई है ना कि पहली मुसलमान बन गई है, तो ये एक क्या कहते हैं एक सारी मुल्क है तो हम उस तरफ जाने की जरूरत है, मगर उसमें भी एक मसाइल है जो बात अब क्लियर की जाए कि बंदे ने ये भी देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इनका बीएमपी जीएमपी बिजनेस कितना है, तो इनने ये भी बैलेंस रखना है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल। आप पूरा पंगा डाल लें मुस्लिम के साथ तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि मौत मेरे समझ ने ज्यादा ही क्या कहते हैं बात करने की जरूरत होती है, मगर बंदे को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सीरियस भी होना पड़ता है और हर चीज को देखना पड़ता है, और हम انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے گی کہ جب میرے پاس بیٹھ جائے گی, ہمارا لرننگ منسٹر بھی بیٹھ جائے گا, تو ہم اس سے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ ذرا صبر کریں اور تھوڑی کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہیں. میں آپ کو چھوٹی ساری مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے آج کچھ لوگ کچھ جگہ پہ ہم لوگ گئے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ مسلمان باہر ہو جائیں تو 70% چیز ہی نہیں بچل. تو اس لیے یہ تو تھوڑی بہت سینسیبل بات کرنی چاہیے اور سینسیبل دیکھنا چاہیے. بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا تو مسٹر سمتھ کو جب موقع ملا تھا نا گورنمنٹ بنانے کا تو گورنمنٹ بنا لیتا, مگر اس نے نہیں لیا چانسز, تو اب اس کی مرضی. آپ دوسرے جن نے چانسز دیے ان کو بیٹھنے دے اور ان کو کام کرنے دے اور اس کو موقع تو دیں گے. وہ تو کوئی اس کو ہم نے بات تو نہیں نکالا ہوا, کوئی کام کرنا چاہے گا تو صحبت بلا ٹیبل پہ آ جائے, اس کی اپنی مرضی ہے. بیٹھ کے بولنا چاہتا ہے بولتا رہے, مگر ہم لوگوں نے جن نے رسپانسبلٹی لی ہے ان لوگوں نے تو کام کرنا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے کسی نہ کسی طرح, تو یہ تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے.
2: شاہ صاحب, جب آئین کہتا ہے کہ الیکشن لڑنے کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو پھر یہ ڈینش پیپلز پارٹی یا دوسرے سیاستدان اس طرح کی باتیں نفرت انگیز آپس میں جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے صرف ووٹوں کے لیے, تو یہ کیوں کی جاتی ہے ایسی باتیں؟
1: جی بالکل صحیح آپ نے یہ سوال کیا ہے, بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اس کی وجوہات ہم خود لوگ بنے ہیں. ہم لوگوں میں چند عناصر ایسے ہیں جنہوں نے اس قانون کو توڑا ہے اور ان کے ٹیکس پیئر کی رقموں کو ملینز کے اندر انہوں نے چیٹ کیا اور دبئی اور دوسرے ممالک میں بھاگ گئے. پھر ہمارے جو رویے ہیں ہمارے ینگسٹرز کے, وہ مرسڈیز گاڑیاں اور دوسری گاڑیوں کو لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہ سیکل فٹ پاتھ پہ چلا کر گاڑیاں اور لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو ڈینش ہے یہ ریشس نہیں ہے, ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے, ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے. لیکن جیسے کہ ابھی عدنان نے کہا, میں اس کی بات پہ بالکل تائید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اب ٹرن اوور لینا پڑے گا. کیوں کہ اب حالات جو ہیں وہ مسلم کنٹریز کے ہاتھ میں ہیں اور جو انٹرنیشنل موسم ہے وہ کافی تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے اندر ان کو جو ہے اب یہ پریشرائز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ہی ہمیں یہاں کے حالات جو ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے. باقی ٹرانسپورٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ 22 سال تک ہم فری کریں گے, وہ ان کو پہلے سے کر دینی چاہیے کیونکہ آگے تو چھٹیاں آ رہی ہیں, بچوں نے اب ایگزام دیے ہیں, وہ تو سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن جو پینشنسٹوں کے لیے انہوں نے مشکلات کھڑی کی ہیں کہ ابھی تک 4 قسم کی پینشنز یہاں پہ مل رہی ہیں لوگوں کو, اور بعض پینشنرز جو ہیں جن کو 2003 کے بعد پینشن ملی ہے یہاں پہ. پینشن دیکھیں جو ارینا پینشن ہے اس کے اندر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ بیمار کوئی ایسے ہی اس کے ساتھ آفت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو مجبوراً پینشن پہ جانا جاتا ہے, تو اس کو وہ پیسے نہیں ملتے جو پہلے ہمارے جیسے ہم لوگوں نے 40 پینشنز لی یا ہم لوگوں نے پینشنیں دی ہیں فل پینشنیں, ان میں انہوں نے کافی ڈفرنس کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے, لیکن امید یہ ہے کہ جو بیٹے فریڈرکسن ہے وہ گرین لینڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہوئے ڈنمارک کے اندر ہو سکتا ہے, میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ کروٹ لے گی اور اس کے ڈینما کی جو بچی کچی ساکھ ہے اس کو بہتر کرے گی اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلق کرے گی. جیسے کہ نان نے کہا یہاں پہ جو اس وقت 65% ڈاکٹرز ہیں وہ مسلمان ہیں, یہاں کے انجینئرز اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اور یہاں کے جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ فارنرز ہیں اور پاکستانیز ہیں مسلمانز ہیں, تو ان کا کام نہیں چل سکتا, لہذا ان کو جو ہے وہ مین پاور کی ضرورت ہے. اور وہ
2: तो शाह साहब क्या इनिस लिस्टन जो है अपने वादों पर कायम रहेगी कि जो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां कह रही हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे और ये दांतों का इलाज जो है फ्री होगा, ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, क्या ये पार्टियां अपने मौकों पर कायम रहेंगी?
1: देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इनिस लिस्टन की बात जो है वो सुनी जाएगी, बाकी जो है क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्रियां ले ली हैं वो एंजॉय करेंगे, और इनिस लिस्टन को इसलिए रखेंगे कि कहीं इनिस लिस्टन जो है वो ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके इनको कोई प्रॉब्लम ना इनके लिए क्रिएट कर सके,
2: सियासी फटाक है।
1: हाँ जी, इसलिए ये कोशिश यही करेंगे कि इनिस लिस्टन जो है ये इसकी बात माने, और इसके जो बाकी पार्टियों को देखे ना, कोई सामने नहीं आया, एसएफ का कोई सामने नहीं आया, रेडिकल का अभी तक मुतालबा कोई सामने नहीं आया, ना ही मॉडरेट का कोई मुतालबा सामने आया है कि भाई इन्होंने कौन कौन से जो है मुतालबे सामने रखे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं तजिया नगार कि भाई बेटे फजिस्तान वापस आएगी तो ये एक दफा दोबारा बैठेंगे और फिर उसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि किस किस पार्टी की कौन कौन सी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि ये तो अमेरी बोर्ड के अंदर पहले ही फैसले हो चुके हैं कि कौन सी चीज लागू की जानी है और किस चीज को जो है वो डिले करके अगले सालों पे डाला जाना चाहिए, और ये मुआहदे तो इनके हो गए हैं। अब वाजिया करें कि किस तरीके से
2: चले, जब तक पूरी जो चीज क्लियर नहीं होगी, सफे पूरे सारे नंगे नहीं होंगे। मजीब साहब, आपकी एसएफ पार्टी है तो आपकी पार्टी भी तो डेफिनेट प्रेशराइज होगी।
0: देखिए जी, मैं दोनों अपने साथियों की बात सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह तजिया निगार है, दोनों बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को पेश करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि मेरा ख्याल है जो नया साल शुरू होगा 2027, शुरू में ही मेरा ख्याल है आगे चीजें आगे बाहर आएंगी। अभी सारा कुछ जितनी भी ये प्लानिंग है वो हुई है या हो रही है, वो उसको पाया तकमील पहुंचाने के लिए थोड़े से इनको और टाइम लगेगा, क्योंकि अब हुकूमत बन गई है और हुकूमत बनने के बाद आपको पता है जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एसएफ 12 साल के बाद दोबारा हुकूमत के अंदर आई है, तो जाहिर सी बात है उनके पास 5 मिनिस्ट्रियां हैं अगर, तो वो अपनी मिनिस्ट्रियों का कारकर्दगी पेश करेंगे तो आइंदा इलेक्शन में उनको कोई कामयाबी हासिल होगी, वरना तो फिर जैसा मैंने बताया कि जो चंद जमातों का हाल हुआ है इनका भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन जरूरी चीज यही है कि मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ऐलान हुआ है, अभी इंतजार करें। मेरा जहां तक अंदाजा है, मैं अपना कह सकता हूँ, ये जो 3-4 महीने होंगे ये दिसंबर तक, ये इन्हीं चीजों में होंगे कि कैसे फैंडिंग होनी, क्या चीज आगे लेके आनी है, क्या चीज अभी पेश करनी है, क्या चीज 2027 में है, क्या चीज 28 में है। तो मेरे ख्याल स्टार्ट उन्होंने लेना है चंद चीजों से और उस पे वो सारे मुत्तफिक होंगे। इन लिस्ट इसलिए मजबूत रहेगी कि उनका ये मुतालबा अगर माना जाता है जी कि 10 ले जो है डेनमार्क में फ्री हो जाए, तो आपका अगर आपके पास अभी अगर 15 सीटें हैं तो रिलैक्स हैं तो 25-30 सीटें ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुतालबा है और ये डेनमार्क सबसे महंगी जो है ना ट्रीटमेंट है थैनले की। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी फौसला है और बाकी जमातों को इसके ऊपर एग्री होना चाहिए। और मैं एक और चीज बिल्कुल वाजिया कर देना चाहता हूँ कि ये अभी जो जमातें जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, हमारे मोहतरम शाह साहब कहते होते हैं ये पीडीएम की जमातें हैं, तो ये अगर इन्होंने कामयाब होना है तो इन्होंने अपनी आवाम की तरफ देखना है। जैसे नान ने बताया पेट्रोल है, जैसे मैंने कहा मम्स फ्री है, क्रोन फ्रॉक्ट और उसके बाद और चीजों के ऊपर भी फ्रो, वहां पे भी उन्होंने मम्स का कुछ सोचना है। तो ये चीजें अगर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो आवाम को सहूलत मिलेगी, तो मेरा ख्याल है हुकूमत कामयाब बन। और जैसे शाह साहब ने बताया ग्रीनलैंड मसला है और चीजें मसले में इंटरनेशनल लेवल पे है, अभी देख लें मुस्लिम कंट्रीज जो है इस वक्त उनके अंदर इतफाक है, और किसी सूरत में भी अब यहाँ पे जैसे शाह साहब ने तफसील बताया कि तमाम एरियाज के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी जो है और फॉरन जो है वो काम कर रहे हैं और अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब इस चीज पे सोचना चाहिए कि हमें ये नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए, हमें जो है रवादारी वाली और हमें जो है मिल जुल के हम डेनमार्क में रह रहे हैं, 50-50% से ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा राइट्स है, हमारे हक है, अगर हम ठीक है, हाँ अगर हम हमारे अंदर कुछ चंद लोग कोई अगर ऐसा काम करते हैं क्रिमिनलिटी वाला काम करते हैं तो उनको तो राइट है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं अगर 5% ऐसे हैं तो 95% जो अच्छे तरीके से अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनके हकूक सल्ब न किए जाए, उनके हकूक और उनकी जो चीजें उनको बेहतर किया जाए। हुकूमत की कामयाबी का राज यही होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चंद चीजें जो है वो शुरू कर दें, ताकि जो लोगों का थोड़ा सा जो होता है ना क्या कहते हैं اعتبار وہ ٹھہر جائے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کرے گی.
2: اذان اب کلوزنگ کرتے ہیں, تو آپ نے ان کی باتیں سنی, تو آپ کا جو سوشل ڈیموکریٹ کے گروپ فور مین ہے وہ تو غیر ملکیوں کو جانتے ہیں, تو لیکن جب غیر ملکیوں میں کوئی ایک آدھ کوئی عنصر ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو سزا اس کو ملنی چاہیے, نہ کہ پوری سسٹم کو ملنی چاہیے, پورے اوورسیز کو ملنی چاہیے یا پورے ڈنمارک کے لوگوں کو ملنی چاہیے.
3: نہیں راجا صاحب, وہی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ یہی اس پہ آج کا ہے کہ ہم نے اسی لیے جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے الیکشن کے اندر, وہ یہی دیے تھے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے جن نے کرائم کیا ہوا ہے, اور جو اس ملک کا کیا کہتے ہیں کوئی بینیفٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے, باقی ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دن رات محنت اس ملک میں کرتے ہیں, ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کمنگ ڈیز میں ہو جائے گا. اور میں کلوزنگ میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت, اور جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک ویورز کے لیے اور سب کے لیے میں انفارمیشن دے دوں, وہ سارے کام شروع کریں گے, مگر ان کی ایک مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ آج 5 جون ہو گیا, اور کمون کے اور ویکیونز کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان نے نیگوشیشن کر لیے ہوتے ہیں اور کمون کو بھیج دیے ہوتے ہیں کہ وہ سمر ویکیشن جانے سے پہلے جو ہوتی ہے 31, 32, 33, 34 کمونوں کی زیادہ تر, کہ اس میں وہ تھوڑا بہت کام کر لے, تو اس لیے وہ ایک منتھ اس میں ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو گورنمنٹ کی فرسٹ پیریڈ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کمون کا اور ریجن کا بجٹ وہ نیکسٹ ویک بیٹھ کے کمونس لینس فائرنگ اور ریگیونس کے ساتھ مل کے بنا لیں, اس کے بعد وہ پھر جو ہوتا ہے فینس بجٹ نیکسٹ ایئر کا وہ بھی جولائی میں تیار کر لیں, تو اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں جو اپنا کام ہے نا اگست میں اپنا ٹریک پہ شروع کر دیں گے. اس لیے ان کی کچھ کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں جس پہ وہ پیچھے ہیں, اس لیے وہ کیا کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اور انفارمیشن داتے دے رہے ہیں کہ جو اولویل ہوتی ہے نا پولیٹیکل اولویل جس طرح ہوگی انفراسٹرکچر ہوگی فینس اولویل ہوگی اکنمی اولویل ہوگی اس پولیس نیم ہوگی, یہ دوسری پارٹیوں نے اس ویکینڈ میں اپنے نام وغیرہ بنا دینے ہیں, وہ جب کمیٹیاں بن جائیں گی تو پھر مسٹر بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے کام شروع کر دیں گے. سو اس لیے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سب کچھ جب بن جائے گا تو آہستہ آہستہ کمون کے بھی کام شروع ہو جائیں گے, مگر پھر ہوم کو جو فینس منسٹر ہے جو جسٹس منسٹر ہے نکولا وامنگ, یہ ان کی فرسٹ پیریڈ یہی ہے کہ یہ جو کمون کے بجٹ ہیں اور ریجن کے بجٹ ہیں یہ بن جائیں, تو اس کے بعد کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ نارملی مئی میں پتا چل جاتا ہے مگر جون آ گیا تو یہ نہیں بنے ہوئے, تو اس لیے ان پہ تھوڑا پریشر ہے کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے یہ منڈے کو ان کی میٹنگیں شروع ہو جائیں گی, ویسے کل جی ویکینڈ میں ہو جائیں گی ہمیں نہیں پتا, مگر پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تقریباً آپ سمجھیں کہ. اور دوسری بات ایک اور چیز کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی ویکیشن ہوتی ہے, تو وہ لا فاصلے جو بننے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک, زیادہ تر وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں, تو جتنے لا فاصلے بنیں گے وہ جا کے اکتوبر سے بنیں گے جب یہ واپس آئیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی سمفے کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں, مگر ویسے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک ویکیشن پہ ہوتی ہے, کوئی لا فاصلے نہیں پاس ہوتا خالی فینس لا کے علاوہ, نہ کوئی ایمرجنسی چیز ہو جائے. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں تبدیلی ہیں, یہ کمنگ ڈیز میں پتا چلے گا کہ اب کیسے صورتحال بنتی ہے.
2: شاہ صاحب کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا کیا, یہ 3-3 مہینے چھٹیاں کرتی ہے اور جو وعدے کیے ہیں شاہ صاحب یہ پورے کریں گے؟
1: بالکل عدنان نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ وعدے ابھی اس لیے ان کو ڈیفیکلٹی آئے گی کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں, انہوں نے سرمایہ جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے کمیونوں کی جو سیونگ تھی وہ لے کے پچھلے سال انہوں نے ساری یوکرین کو دے دی, اپنے چیزیں دے دی, پھر اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ڈیفینس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پچھلے سال بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے, اور اس لیے ان کے پاس ابھی ان کو مشکلات آئیں گی. آپ کمیونوں کا یہ اثر دیکھ لیں کہ یہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر, سائڈوں پہ اوپر گھاس بڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمارے کونسلرز جو ہیں خواہ وہ ڈینش ہوں فارنرز ہوں جو بھی ہوں, ये उनका काम बनता है कि सबसे पहले जैसे डेनमार्क एक नाइस और क्लीन कंट्री होता था, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप इंग्लैंड में गए हुए हैं और उतरते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ जो है वो गंदगी गंदगी नजर आती है। यही हिसाब अब यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है और इससे जो है वो हमारे हालात जो है वो खराब है। दूसरी चीज यह है कि जो बच्चों के लिए है, इनको सबसे पहले ये चाहिए कि बच्चों के लिए जो बान हेमन है, बस बान हेमनों में बहुत हाई किस्म की, जिनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में जाने की, उनको जो पैसे देने पड़ते हैं पास है पेरेंट्स को, उसको कम करना चाहिए। और ये हर मुल्क कम्यून से कम्यून जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोपनहेगन में एक बच्चे के 500 है तो फिर यूलैंड में भी एक बच्चे के 500 होना चाहिए। इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए। दूसरा जो वेलफेयर है, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ये करेंगे कि जैसे मजीब कुरैशी मेरे भाई ने कहा कि थैंडे जो है ये कुछ थोड़ा सा कम कर देंगे, कम्यूने जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगी, लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि बसों का, तो बसें जो है ये कम्यून भी बसों को छूट देती है बल्कि उनकी मदद करती है, इसी तरीके से रिजून भी उनकी मदद करती है। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो कम्यूनों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बसें जो है वो चलाने के लिए जो कंपनी है उनकी वाबा है और उनके उनको चाहिए कि जो वो टिकट लेते हैं या जो उनके अंदर मुसाफिर जाते हैं उनको भी दूसरी कंपनियों की तरह टैक्स देना चाहिए, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स या दूसरी प्राइवेट लिमोसिन वगैरह हैं वो टैक्स देते हैं, इनको भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट से पैसा लेने की बजाय, इमदाद लेने की बजाय ये यहाँ, तो अगर गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं तो फिर इनको चाहिए कि पेंशनिस्टों को, जो हैंडीकैप है इनको और जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं इनको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। जी राजा साहब,
2: चारों से सवाल है हाँ और ना में जवाब देना है, इसको अगले हफ्ते डिबेट की तरफ लेकर जाएंगे। मजीब साहब आप क्या समझते हैं, पेंशनिस्टों के लिए बस पास ट्रेन पास ये सारा फ्री होना चाहिए, एनओकों का इलाज और इसी तरह एनके फ्री होनी चाहिए, इसी तरह जो बाकी दांतों का इलाज जो फ्री होना चाहिए, आप क्या कहें हाँ और ना में जवाब देना है आपने।
0: जी बिल्कुल होना चाहिए, मैं सिर्फ एक चीज सिर्फ आधा मिनट लूंगा, बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं ये सारी इनके लिए फ्री होनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वह हर बंदे को 8 से लेकर 10,000 पाउंड मिलती है, तो उसमें तो गुजारा भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक चीज, क्योंकि जो जो नई गवर्नमेंट के लिए जो मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये आ रही है खबरों में भी आ रहा है और सुना भी जा रहा है कि ये हो सकता है टैक्स को ना थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया ये टैक्स बढ़ाते हैं तो मराहत कहाँ पे है, अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आसानियां कहाँ पे है। तो जो आपने चीजें गिनवाई हैं पेंशनिस्ट के लिए, जो खान साहब ने मतलब कहा है कि बस के लिए जो किराए वगैरह है, ये जैसे स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सहूलतें, उनसे खासकर जो जो बाने फैमिली है जिनके बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनको भी एक्स्ट्रा इमदाद मिलनी चाहिए। आज आप देखे ना, हम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज आप किसी सुपर मार्केट में जाए आपके पास एक 1,000 करोड़ का अगर आपने सौदा लेना तो आपका एक तो थैला भी नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और जो चीजें आपने बताई हैं वो पेंशनिस्ट के लिए फ्री होनी चाहिए।
2: जी शाह, फ्री होनी चाहिए और नाम है
1: ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसके अंदर ये है कि पेंशनिस्टों को जो बोली दी है इन्होंने, वो बोली आप हैरान होंगे कि वो वेस्टाइन और कोपनहेगन में वो बोली जो है वो अनमेनली बोली जो है, अनमेनली बोली सेल्स के जो किराए पे कमरे देते हैं, लाइरी देते हैं, उससे ज्यादा महंगे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे ने जो पेंशनिस्ट चला जाता है या खुदा ना करे वो फोर्सेस पेंशन पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए जो किराया है वो जिस तरह 70s और 80s में होता था उस तरीके से उनको हाफ किराया देना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि लोगों की इतनी पेंशन नहीं है जितने के ज्यादा वो अपना पेंशनिस्ट जो है वो दे रहे हैं, हौसला है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है कि दो घर के फर्द जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, जब वो दोनों पेंशन के एज पे पहुंचते हैं तो एक एक को कम पेंशन मिलती है और दूसरे को ज्यादा पेंशन मिलती है, वो उसका बहाना ये करती है गवर्नमेंट कि देखे जी ये तो हुस्टन इनकम, ये जो सिलसिला है हुस्टन इनकम का ये खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके से लोगों के जो पास बचत है वो ज्यादा होगी, अगर दोनों को बराबर का पेंशन मिलेगी तो वो खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस वक्त पेंशनर्स और बच्चों वाली फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा दबी हुई है इकोनॉमिकली, उनके ऊपर बहुत बंडल है। जी राजू साहब।
2: जी अदनान, आखिर में आपसे भी ये सवाल सारे आपके साथ, आपने सुन लिए सबके जवाब भी सुन लिए, और आखिर में आप क्या कहेंगे?
3: ये ऐसे ही होना चाहिए और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पे इंशाल्लाह ताला काम भी किया जाएगा और इसके लिए हल भी निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जैसे कहा गया है कुछ चीजें प्रेशर पे है, पर इंशाल्लाह ताला इस पे अब काम किया जाएगा और इस पे देखा भी जाएगा, और कमिंग डेज में जैसे जैसे हमें तलाब मिलेंगी कि फ्रेंड्स ने कैसे है तो भी उसको बताएंगे।
2: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। सामने नाजरीन ये थे अदनान अली अमीन, सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, मुजीबुर्रहमान कुरैशी साहब, इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, हमने छोटे छोटे सवाल भी किए, उनकी राय भी ली। सामने नाजरीन आपको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा कार किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके जहन में कोई बात है, आप अच्छी कुछ राय देना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।
4: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: आप हैरान होंगे कि मैं कल कम्यून के अंदर गया तो मैंने वहां पूछा कि मैं बॉम्ब मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, तो कहते हैं जी आप यहाँ नाम रखा जी हम आपको कहेंगे। मैंने कहा उसका डायरेक्ट टेलीफोन नंबर उसकी है, तो वो कहने लगे जी वो तो उसका तो डायरेक्ट टेलीफोन नंबर ही नहीं है। तो ये मुझे हैरान हुई है, इस पे आप बात करें जरा, ये बताएं लोगों को इन्फॉर्मेशन
1: एक बात
0: क्या चल रही है।
1: राजू साहब, मैं एक मिनट बात करता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ये जो हरिकेन विंसर की समीये की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये इसकी मैं एक आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ जो मुझे इसकी पसंद आई थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी इसके साथ ना नवंबर में, जब मैं इसकी नवंबर और ये अब भी मेरी इसके साथ जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो ये एक जगह पे आई हुई थी और वहां पे हम लोग भी थे अपने कैंडिडेटों के साथ, और इसकी बहुत अच्छी बात थी और हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने इसे, मैं उधर खड़ा था, मैं दूसरी साइड पर खड़ा था, मुझे ही तो पता ही आई हुई है, क्योंकि इसको पता था कि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ और मैं उनका टीम का हिस्सा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने इससे एक सवाल किया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि ये देख ये जो चीजें चाह रही हैं बड़ा मुश्किल हालात है। इसने मुझे वही आपकी बात है, जब आप जो टीम की तरफ आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो यही मुझे इसने कहा, कहती है मसला ये हो जाता है कि हम लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं ना कम्यूनों के अंदर और हमारे रेस्पेक्टेड चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा को ये नहीं मालूम होता कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलने होते हैं और कैसे चलने होते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको शायद अब बता दूं, हम अभी एपिसोड में बैठे हुए हैं और हमारे जो आपकी बात सही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है, और यही एक फैसला होता है और इसका होता है। पिछले साल 2025 का जो बजट हमने बनाया था ना, और जो जिसके बारे में था, वो हमें फूलिया ना मिलते ये जो होते हैं लेंस कम्यूनल्स लेंस वाइन से, तो हमारा बजट पूरा नहीं था ना। और मैं आपको यही कहूं कि अब इनकी जो कोशिश है कि यही लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, हर जगह ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर जगह क्या कहते हैं सड़कें खुली हुई हैं, पता नहीं बंदा जा रहा एक जगह होता है तो पता चलता है ये बंद है। ये इनकी ये पता नहीं ये भी पॉलिसी है और क्यों है ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2000 अभी तक तो अब यही पता है कि 2027 के जो बजट्स हैं वो बेस्ता इनकी कम्यूनों के, अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मिसाल नजर नहीं आ रहा, मगर अब ये क्या कहते हैं ये जब गवर्नमेंट बैठेगी और कम्यूनल स्लेंस फाइनिंग और वैक्यूम्स के बजट बनाएगी, तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है और कितना क्या कहते हैं कम्यूनों के अंदर चेंजेस आते हैं,
2: असल
1: क्योंकि
2: बात तो अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनी निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपेनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने अब जो मेला लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
1: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपेनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ एक दिन, तो मैं खुद फंसा हूँ एक दिन, तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठे हुआ है सोशल डेमोक्रेट को, मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोग कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं अब कोशिश कर रहे हैं अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो, कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है, तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हैं अब ये, मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल लेना। और ये एक मसला है कोपेनहेगन के अंदर, काफी मसला है, और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सिकंदर भाई
2: नहीं, आप
1: हो,
2: ट्रांसपोर्ट के
1: कासम भाई,
2: वजीर से भी तो बात करें ना। असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं जो ना, वजारतें ले लेते हैं, इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
1: राज साहब प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना।

0: जो होता है वो कम्यून के हवाले में होता है, वो कम्यून खुद क्या कहती है उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, और जब जितनी देर तक कम्यून ही सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ बड़ी होती है। कोपेनहेगन में मसला ये है कि कोपेनहेगन के अंदर एक पार्टी है, तो आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं, उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे बसों में ट्रेनों में ये घुसे, और वो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी 2025 में भी 2021 में भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे वो, तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा क्या कहते हैं होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी क्या कहते हैं वो अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उनने ये क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं, तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपेनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्टी बनाई जाए, तो क्या कहते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोपेनहेगन की इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है, क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं ये कुछ दफा ब्रॉन भी मैंने देखा मैचों पे, और ग्लोव तो कुछ देखा, और मैंने पेबिनसुला में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्हें बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं माजा चाहता, मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा, मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि आपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम जब हम पता चलेगा कि मॉडल सिचुएशन कैसे है
1: ज़रा यहाँ
0: तो फिर।
1: सिस्टम से काम होता था। अदनान, आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल मिनिस्टर की ओलो ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
0: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट जो उसका उसकी पार्टी का वो बैठेगा, वो इतनी देर तक उसने ये इसलिए, और राजा साहब ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें जी मेरे ख्याल से उनके पास जब वो आए थे अंदर 9 या 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर क्या कहते हैं फिर उनके जो तो काम का लोड होगा दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उनका आइडिया अच्छा है, और एक मोटी क्या कहते हैं एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मैथियस सिपाही, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के आया उधर बादशाह के पास, तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस, और पैदल चल के जब गया ऑफिस तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो, तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा सुबह, आपको बान की बात होगी कि वो आज सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया गाड़ी
1: इसलिए कि उसको गाड़ी
0: के
1: पे
0: अंदर,
1: जाए तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
0: नहीं पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, वो कहता है मैं क्यों जाऊं, कहता है मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत ही इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है, वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिस्त्री का काम करूंगा, जब मैं कूपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम कर सकूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
1: तो
0: ज्यादा
1: चलें
0: मिसालों को
1: अदनान
0: क्या
1: आते हैं,
0: करूंगा।
1: शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार सब देखे नहीं पार्लियामेंट जो मेंबर है ना देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना तो एब्रिस्लोन का जो एब्रिस्लोन से बंदा निकल गया है रहता मचियस यहाँ का ही है, मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है एक जजीरा बना होता है, जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का वो नहीं निकल सका, जो गडखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे वो भी नहीं निकल सका, बीवी लाए थे एब्रिस्लोन से वो भी नहीं निकल सकी, अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्रिस्लोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्रिस्लोन से, क्यों नहीं आ सके
1: नहीं,
2: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल फ्रंट है, सोशल डेमोक्रेट हो दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी, असूली तौर पे डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की डॉट सीधा सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट आया वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाएं। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं, हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इसमें अगर आप वजाहत कर दें साथ
2: जी,
1: साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं।
0: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की, शाह साहब ने बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो दे देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन वो दो हिस्से में होती थी रैकियों, अब वो एक रैकियों में होगी तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। या तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुबा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में एक जॉब होती है ना वो इसने 3-4 मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी कमोनिटी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है, कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना इसकी मिस्ट्री में तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है, मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये माचन देखो खुद लेगा मगर उसने नहीं ली, तो इसको ली है, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है की मीटिंग, जो मेरे को तो काम ही करके, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपको उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूगो में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है, ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: अच्छा साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपसे रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलकेली उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं है कि वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट वोट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाईएस्ट वोट ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सब सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने रابطे ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने रابطे किए और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से रابطे करूंगा और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम एक साल पहले होता तो तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे चंटे रहो हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिए कि लोगों की इतनी इज्जत होगी है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं मुझे गाय पूछते हैं मुझे कहते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं मेहरबानी आपकी, आप टाइम निकालते हैं टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया आपका कभी भूलूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी बांजा है मेरी बेटी है वो जहां जाते हैं वहां वो यंगस्टर पूछते हैं तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है आप लोग मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है, इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं अभी तो मैंने देखा नहीं है कुछ
2: यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो जब चाहे बॉडी सेल्स के बारे निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूं कि आप अवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलहदा चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप कि कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चार साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे तेजपाल को पिछी के लिंक आने लग जाते हैं, और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटीग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो
1: चले, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ।
2: अदनान, बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून का जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जी शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहें और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें।
0: शुक्रिया आप दोनों का, हम दोनों का फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको।
1: अल्लाह
2: हाफिज।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा। समय नाजीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो है वो सवाल जवाबात की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।